हम सफरी, मेरी हम सफरी, और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो, हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निमर तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई, और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी, और नाइची ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, चीज ही नमो ये फिल्म है जी। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे ओ हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श नहीं खती हों फन शस्त्र के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफ़ी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. We are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cavalry number.

और अब नाराज खुदा कह रे करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

करा रे शाह जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता ना, पुराना गीत कितना अच्छा लगता।

तो दोस्तों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1926 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथ ही छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैव टू नॉट ऑल्टे लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर प्रोग्राम, कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं महान संगीतकार यार द ग्रेट ग्रेट ग्रेट मास्टर मदन मोहन जी के कुछ नगमे आप सुनेंगे, उसके बारे में कुछ बातें भी आप सुनेंगे, और उसके बाद सिर्फ नगमे सुनेंगे आप जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं, बीच में कुछ ज्ञान के बातें है भी, कुछ शेर शायरी है। तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना यारो, मज़े लेते रहना, जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे, और आप सभी को हिल फील लेस्टर प्लेजियर।

लो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्यारे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे एक अति सुंदर बयान, ऐड फिल्म जहां तुम वहां हम, आकाशवाणी में ये नगमा पेश किया गया। सुपरहिट सॉन्ग कैसे कटेगी जिंदगी और वो भी तेरे बगैर, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय माएस्ट्रो मदन मोहन रफी साहब जी के मधुर आवाज में।

beautiful song dilko chulene wala bayan sunaya aap sabhi ko suru ka bacha the king of melody padmai shri mohammad rafi sahab composed by maestro madan mohan ji. agla bayan ek aur zabardast song hai aur ek bar phir suru ka bacha the king of melody padmai shri mohammad rafi sahab from the movie sharabi 1964 राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ सुपरहिट सॉन्ग. कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर आएगा. रवि साहब जी के मधुर आवाज में आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

ले बैठा हूँ कब से इस मैखाने में, कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझा।

Beautiful Song, Wonderful Song from the movie Sharabi 1964, composed by Maestro Madan Mohan Alfaze Te Rajinder Krishan Ka aur Awaaz Suru Ka Bacha Ravi Saab Ji Ka. श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नगमे मदन साहब ने रफ़ी साहब और लता जी के लिए कंपोज किया है. लता जी को तो वो अपना बहन मानता था और राखी के दिन ये दोनों भाई बहन बहुत ही शान और शौकत के साथ रक्षाबंधन मिल के मनाते थे. तो अब आ रही है आप श्रोताओं की खिदमत में सुरों का देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे. ऐड फिल्म अनपढ़ निकटिंग ट्वीन सिस्टर राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

अनपढ़ आपकी नजरों ने समझा। सुरों का देवी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। राजा मेहदी अली खां के अल्फाजे कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर बड़का भैया श्री मदन मोहन जी। एक और अति सुंदर बयान है आप श्रोताओं की सेवा में मैं रख चुका हूं प्लेयर में सुनाने के लिए। राजा मेहदी अली खां एक महान लेखक था जिसके साथ मदन मोहन जी ने बहुत काम किए और उन्हीं के अल्फाज में आप सुनेंगे लता जी के मधुर आवाज में। अगर मुझे मोहब्बत है क्या बात है, कंपोज बाय माएस्ट्रो मदन मोहन जी फ्रॉम द मूवी आपकी परछाइयां, ऑल्सो फ्रॉम 1964।

0: beautiful song.
1: To enjoy.
0: Wonderful song from the movie Apekeeper Chaya 1964. Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke madhura vaas mein aap sabko aati sundar bayan suna, composed by Madan Mohan Alfazeti, Raja Mehdi Ali Khan ka. To vaada ke mutabik hamare priy priy shrotaon, kuch gyan ke baatein ho jaye. पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने इंसानियत, मनुष्य, मैन सहित के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम लोग सीखेंगे, तो ज़रा गौर फरमाएं। अर्ज किया है, बहुत ही पुराने ज़माने का आदमी था श्री मार्कस ऑरेलियस। Hij was een Romeins keizer en leefde van 121 tot 180 na Christus. Marcus Aurelius, ne kaha hai manushya ke bare mein aro ki, vergeet niet, het is de geheime kracht diep in ons weggeborgen die onze drijfveren stuurt. Daar komt die overredende stem vandaan. Daar ligt de kern van het leven. Daar zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelf? Ik hoor Mahagyani Sri Inayat Khan ne bhi kaha hai manushya ke bare mein ki, he was an India's musicus, schrijver en filosoof, leefde van 1882 tot 1927. Aur Inayat Khan ne kaha hai manushya ke bare mein ki, de mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet. Akema Kahai Sri Midas Dekker. Hij is een Nederlands bioloog, presentator en schrijver, geboren 1946. Een Midas Dekkers Nikahai Manusje Kebarmeerki. Een huisdier geeft ieder mens de kans een baasje te worden. Agemekahai Sri Napoleon Bonaparte. Hij was een Frans staatsman en keizer. Leefde van 1769 tot 1821. O Napoleon Bonaparte nekahai manusje kebarmearuki. Er bestaan twee hefbomen om de mens in beweging te brengen. Vrees en eigenbelang. Friedrich Nietzsche. Hij was een Duits dichter en filosoof. Leefde van 1844 tot 1900. O Friedrich Nietzsche, nekahage, manusje, kebarmerki. Het slechte is de beste kracht van de mens. Blaise Pascal, hij was een Frans wis- en natuurkundige en filosoof, leefde van 1623 tot 1662. Blaise Pascal, ik ga hij manusje kebarmearuki, in ieder mens is er een oneindige afgrond die men alleen met God kan vullen. Albert Einstein, Mahagyani, ook de uitvinder van de atoombom. Hij was een Duits-Amerikaans natuurkundige, leefde van 1879 tot 1955. Albert Einstein, nikahai manushya kebarmearuki, de mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze. Het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert. Freek de Jonge, hij is een Nederlands cabaretier, geboren 1944. Freek de Jonge, bikuchkahai manusje kebarmear, or wakahaiki, een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is. Een doordenkertje hoor, heel goed Freek. Aldous Huxley, hij was een Engels schrijver, leefde van 1894 tot 1963. और अल्दुस हक्सली ने कहा है मनुष्य के बारे में यार कि एरफारिंग इज नीट व्हाट एन मेंस ओवरकम्ड, इट इज व्हाट एन मेंस डूट मेट व्हाट हिम ओवरकम्ड। एंड द लास्ट फ्रॉम वंडा काइजी कॉन्फ्यूशियस, ही वाज एन चाइनीज फिलोसोफ en leefde van 479 voor Christus tot 551 voor Christus. Bahut hi purane zamane ka aadmi tha. Aur Confucius, Chinese filosoof, ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt. Kya baat hai, bahut hi सत्य बात, सच्च वचन, ऊंचा बात ने कहा ये चाइनीज फिलोसोफ कॉन्फ्यूशियस जी ने। तुम्हारे पेपर श्रोताओं, अभी आप कुछ उदाहरण कहावतें सुने जो मनुष्य के बारे में जाता है। लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि कुछ ना कुछ सीख तो जरूर इन बातों से हम लोग सीखेंगे ना। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो, अब आप कुछ बातें सुनेंगे ये महान संगीत के बारे में, कुछ अनसुनी बातें, और खास करके उनके बेटा समीर मदन मोहन कोहली के आवाज में आप उनके पिताजी के दिग्रेट मदन मोहन जी के बारे में कुछ बातें सुनेंगे, मिलके सुनते हैं।
1: नमस्ते, मैं हूँ एकता जैन और आज का हमारा एपिसोड सिर्फ म्यूजिक पे रहने वाला है, वो म्यूजिक जो हर किसी को पसंद आता है, हर किसी के दिल के करीब है। और हमारे दिल के करीब जो होने वाले हैं, आज होने वाले हैं मदन मोहन जी के बेटे समीर मोहन जी। हेलो,
2: वेलकम। थैंक यू।
1: आई नो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही हूं।
2: पहले कि आप कोई सवाल पूछे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके और आपके देखने वालों को, कि इस साल मदन जी को हमसे बिछड़े हुए एग्जैक्टली 46 इयर्स हो जाए, और अगर इतनी सालों के बाद भी आप लोग याद करते हैं उन्हें, आपके लिसनर्स याद करते हैं, ये कुदरत का करिश्मा है। एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू ऑल हिज ऑल द लवर्स ऑफ म्यूजिक एंड पीपल हु लव हिज म्यूजिक फॉर हैविंग केप्ट हिम एंड हिज फिनोमिनल लेगेसी अलाइव। थैंक यू सो मच। अब आप पूछे जो आप पूछना चाहते
1: हैं। मैं ये सबसे पहले तो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही थी उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए, बिकॉज
2: बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं,
1: सच अ ग्रेट मैन।
2: थैंक यू सो मच,
1: बिकॉज वी कैन नॉट से इन वर्ड्स कि वो क्या थे, उन्होंने क्या काम किया हमारे
2: जी, आप मानेंगे नहीं, कभी कभी मेरी भी जबान थरथराने लगती है जब उनके बारे में बात करता हूँ।
3: Het is Amazon Prime Day. Twee dagen lang geweldige

0: sorry about that.
1: Not John, please. But
0: हम मदन जी के बारे में ये जानना चाहेंगे कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, फिर वो इंडिया कैसे आए, बिकॉज हमने जहाँ तक सुना है कि वो कहीं और से इंडिया आए.
1: जी नहीं, ऐसा है कि मेरे पिताजी की पैदाइश बगदाद में हुई थी.
0: Okay.
1: जो इराक का कैपिटल है. वो जमाने में अंग्रेजों की मिल्कियत थी, पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. और मेरे ग्रैंडफादर वहाँ इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे.
0: ओके.
1: तो 1924 में 25 जून को मदन जी की पैदाइश बगदाद में हुई. और फिर करीब 7-8 साल बाद जब इराक अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तब मेरे ग्रैंडफादर अब वापस आ गए अपने होम टाउन जो इस वक्त पाकिस्तान में है.
0: okay.
1: चकवाल नाम का एक छोटा सा शहर है रावलपिंडी के पास. और फिर मदन जी की कुछ साल वहाँ पैदाइश हुई. और फिर बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में मेरे ग्रैंडफादर बॉम्बे शिफ्ट हुए. पहले बॉम्बे टॉकीज में पार्टनर बने, देविका रानी उसकी मालिक थी उस जमाने में.
0: wow.
1: हिमांशु राय उनके हस्बैंड. और बाद में फिर बॉम्बे टॉकीज छोड़ के फिल्मिस्तान स्टूडियोज के पार्टनर बने. तो मदन जी की बेसिकली स्कूलिंग मुंबई में ही हुई है, सेंट मैरीज स्कूल.
0: वाओ, ओह माय गॉड, दैट इज सच अ लॉन्ग जर्नी ऑफ
1: वेरी लॉन्ग जर्नी
0: ऑफ
1: बगदाद टू चकवाल टू मुंबई. यस,
0: एंड मुंबई से हमारे सबके दिलों में.
1: नहीं, ऊपर मुंबई से भी एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है कि मेरे ग्रैंडफादर हालांकि स्टूडियो के मालिक थे
0: जी,
1: मदन जी उस जमाने में अपने यंगर डेज में शौक था कि मैं थोड़े बहुत एक्टिंग करूं, म्यूजिक में आऊं. मेरे ग्रैंडफादर नहीं चाहते कि वो फिल्मों में आए. तो उन्होंने उनको आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया. पहले देहरादून में एक स्कूल है विच बेसिकली ट्रेन्स पीपल फॉर द आर्मी.
0: ओके.
1: तो वहाँ पे करीब एक साल रहे स्कूलिंग खत्म करने के बाद.
0: okay.
1: और फिर जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो मदन जी ज्वाइंट द आर्मी एंड 2 साल के लिए वो फौज में रहे. 1944 और जैसे वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उन्होंने आर्मी छोड़ दी.
0: But how army and music?
1: अब वो क्या army तो इसलिए हुआ जैसे आपसे कहा कि मेरे grandfather का थोड़ा सा बहुत दबाव था उन पर.
0: okay.
1: पर basically शौक तो music का था. फिर उन्होंने army छोड़ी तो All India Radio लखनऊ में उन्हें एक नौकरी मिल गई. वो पहले 1-2 साल वहाँ रहे, फिर दिल्ली आए पर कुछ खुश नहीं रहे और फिर वापस बॉम्बे आए स्ट्रगल करने के लिए.
0: okay.
1: बट हुआ क्या कि मेरे grandfather को बिल्कुल ये बात रास नहीं आई. उन्होंने उनको लिटरली एक तरह से कहूँ तो घर से बेदखल कर दिया. तो मदन जी जो भी बने छोटे या बड़े अपने बलबूते पे बने.
0: छोटे बड़े नहीं होते.
1: नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की. उनको इसके बावजूद कि मेरे ग्रैंडफादर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, मेरे ग्रैंडफादर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला अपना करियर शुरू करने में और बनाने में. मैंने तो कई आर्टिकल्स उनके पढ़े हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं 6-6 दिन रोड पे सो रहा हूँ.
0: wow.
1: मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया है. बट एक जिद थी कि मुझे म्यूजिक की बिजनेस में ही, म्यूजिक की दुनिया पे ही आना है.
0: तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है
1: जी.
0: वो जिस साल में मिला तो जी. उसके इंसिडेंट के बारे में हमने सुना.
1: वह क्या है कि उस वक्त तक मैं आपको सीरियसली अगर बताऊं तो मदन जी थोड़े से ऊब गए थे, थोड़े से डिसिल्यूजन हो गए थे कि इतने साल इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें कभी उस किस्म की रिकग्निशन मिली नहीं. तो ये जब मिला उन्हें, ये फिल्म थी दस्तक.
0: okay.
1: संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान इसमें थे. और जब मैंने उनको जाके खबर दी तो वो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे. उनको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा कि यू एक्चुअली वन इट, बिकॉज वाई देन ही वॉज अ लिटिल डिसिल्यूजन देन. मैंने भी सुना है कि लता मदन जी के साथ इससे पहले कि मदन जी म्यूजिक डायरेक्टर बने, मदन जी ने अपने एक फादर की एक फिल्म बनी थी शहीद, उसमें लता जी के साथ एक डुएट गाया था, बच्चों का गाना था. तो उस वक्त लता जी से पहली मुलाकात हुई थी उनकी. और उस वक्त उन्होंने लता जी से कहा था कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप ले गाएं. पर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री का कभी कभी रिवाज है, लोगों ने जाके लता जी के कान भर दिए कि बड़े बाप के बेटे हैं, पता नहीं कितना सीरियस है. तो मेरे फादर की जो पहली फिल्म थी आंखें, इसके बावजूद कि लता जी को ऑफर गया था, वो उन्होंने उस फिल्म में गाने से इनकार कर दिया.
0: ओके.
1: तो उसके बाद लता जी जाके मिले उनसे और उनसे मुलाकात हुई और बड़ी सपोजिटली इमोशनल मुलाकात हुई. उसी मुलाकात में उन्होंने उनको अपनी बहन बना दिया और लता जी ने एंड तक ना ही उनकी बहन बनने का नाता निभाया, हमें हमारी तो गॉड मदर रही, हम बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है. इट्स बीन अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप. और उनकी लिटरली कभी कभी बेटी भी बुलाते थे उन्हें, तो इट वॉज वेरी स्पेशल बॉन्ड.
0: यस यस यस यस. तो उनके फेवरेट सिंगर कौन थे?
1: लता मंगेशकर. वो तो कभी कभी ये भी कहते थे कि अगर मैं कोई मेल सॉन्ग भी बना रहा हूँ तो मैं सबकॉन्शियस ये सोच रहा हूँ कि अगर लता गाती तो कैसे
0: गाती.
1: रफी साहब वाज अ वेरी फेवरेट. रफी साहब किसके फेवरेट नहीं थे?
0: किसी के फेवरेट, सबके फेवरेट.
1: इन द अर्ली डेज ऑफ हिज करियर वेरी डियर फ्रेंड विज तलत महमूद साहब सैंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स बट देन ही फेडेड आउट अ लिटिल बिट. तो बेसिकली रफी साहब, लता जी, आशा जी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कोर्स.
0: सो ये उनकी जो जर्नी थी एंड उसके बाद हमने सुना कि उनके ऊपर एक स्टैंप आई थी, 5 रुपए की स्टैंप.
1: नहीं, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये करीब 5-6 साल पहले की बात है. करीबन 100 करीबन इंडस्ट्री के 100 पर्सनालिटीज पर उनको ये स्टैंप बना था एंड ही वाज वन ऑफ द लकी वंस टू हैव बीन चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
0: Wow.
1: To give him this
0: honor. It's really an honor ki like aapke naam se aapke photo ke saath ek stamp.
1: Bilkul, bilkul, bilkul.
0: And it's a symbol of India.
1: Absolutely.
0: Okay, to jo unki jo last film mein jo music aaya, hum kehte hain ki Veer Zara mein unka jo music aaya, to how is the feeling about that thing?
1: It's unbelievable. Because dekhiye kya hai ki उस जमाने में, उन जिस जमाने में वो म्यूजिक देते थे, फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार सबसे बड़े हीरो थे, पर दिलीप साहब के साथ उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं की बिकॉज वो कमर्शियली उस ब्रैकेट में कभी आए ही नहीं. तो ये तो अजूबा था. आई मीन इट्स आई थिंक इज द ओनली कंपोजर इन द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम्स टू जिनका ओरिजिनल काम उनके जाने के 30 साल बाद लोगों के सामने आया. ओरिजिनल काम जो पहले कभी लोगों के सामने नहीं आया. ये दुनिया उनकी आवाज में उनके स्कूल से पढ़ी थी, हमें मिली थी. मेरे भाई साहब जो उस वक्त यश चोपड़ा साहब के लिए काम कर रहे थे, उनको सुनाई, उनको अच्छी लगी. द रेस्ट इज हिस्ट्री. वो फिल्म बनी.
0: वो म्यूजिक बहुत,
1: और उन्हें उस फिल्म के लिए अपना पहला पॉपुलर अवार्ड, द आईफा अवार्ड 2004 का मिला.
0: वाओ,
1: द ओनली पॉपुलर अवार्ड ऑफ हिज करियर. न्यू फुलतारा नेचुरल एंड बियोलॉजिकल.

0: लता जी की जो हमने स्पेशल बॉन्ड की बात की, उन्हें लता जी एक स्पेशल नाम से भी बुलाती थी, वो
1: मदन भैया
0: नहीं, there is something else, गजल के
1: बादशाह, वो क्या है, एक फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में,
0: okay.
1: जिसका नाम था अदालत. अदालत की थी, अदालत वाज अ स्टोरी ऑफ दिस गर्ल हु बिकम्स अ नॉच वुमन, यंग लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, तो उसमें गजलों का सो स्कोप था, वो मुजरा गाती है, तो उसमें तीन गजलें इतनी मशहूर हुई, हालांकि फिल्म नहीं चली, पर तो उस पर के बाद ऊपर एक स्टैंप लग गया. और ये बात सही है कि फिल्मों में गजलों का जो चलन चला वो बादल जी से ही शुरू हुआ, और बादल जी डिड फिनोमिनल वर्क, बट इट्स नॉट दैट द ओनली, दैट इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ वर्क ही डिड. उन्होंने हर किस्म का गाना बनाया है. अब आप देखिए, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ.
1: आज लोग कहते हैं इट्स द अल्टीमेट वेस्टर्न सॉन्ग इन हिंदी फिल्म्स, वो भी उनका है
0: जी.
1: तो हर किस्म का, लग जा गले भी उनका है, तो हर किस्म के गाने बनाए. अब लग जा गले आपको मालूम होगा, आप यूट्यूब पे इतना काम करते, 200 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब,
0: यस,
1: अपार्ट फ्रॉम आई थिंक ऑलमोस्ट 12,000 to 13,000 वर्जंस ऑफ दैट सॉन्ग ऑन यूट्यूब.
0: वर्जंस अभी आजकल कवर,
1: तो ये जो अनफॉर्चुनेटली ये जो सक्सेस उनके नाम आई है, अनफॉर्चुनेटली उनके जीते जी उन्होंने नहीं देखा. लेके चला गया साथ. He was a little disillusioned towards the end of his life. Because he felt he was not wanted. He felt people don't appreciate him. वो एक दिल में एक फीलिंग आ गई थी कहीं ना कहीं.
0: Oh my God. कभी भी हमेशा हम लोग ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये हमेशा सुना है कि किसी को कुछ अप्रिसिएशन उसकी जीते जी नहीं मिलता है, जैसे हमने मदन जी के बारे में सुना. सेम वैसी ही बात हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुनी. जब वो जिंदा थे तब उनके पास उतनी अप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिली. उनके मरने के बाद जो उनकी फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई, दैट मेड लाइक हिस्ट्री.
1: एब्सोल्युटली.
0: सो आई डोंट नो व्हाट्स विद द फिल्म इंडस्ट्री और ये, मतलब
1: दे फॉलो एन एडेज कॉल्ड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. सो ठीक है, इट्स इन द बेट्स. ओके, आखिर प्रोड्यूसर अपना पैसा डालता है फिल्म में, तो वो तो चाहते. मदन जी पे के बारे में लोग कहते म्यूजिक तो उनका बहुत अच्छा है बट फिल्में चलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में. और मदन जी वाज अ वेरी वेरी प्राउड एंड अ वेरी वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन. उन्होंने कभी किसी के पास वो गए नहीं काम मांगने के लिए, कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे काम दो. वो अपनी जिंदगी अपने असूलों पर जीते रहे, और शायद ये इंडस्ट्री उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती जो लोग असूल पसंद लोग हैं.
0: तो मदन जी ने जो फिल्म में तो काम किया है, उनके अलावा जो हम कहते हैं नॉन फिल्मी एल्बम्स,
1: नॉन फिल्म एल्बम्स नहीं थे,
0: कभी नहीं किए उन्होंने. ही वाज नॉट ड्रॉन टू इट,
1: उस जमाने में वो चलन था ही
0: नहीं.
1: Not to a great extent.
0: Okay.
1: और मदन जी एक चीज आपको याद है, मदन जी died very young. He was only 51 when he passed away. He had a lot of music left in him, but that's the way life is.
0: That's the way life is. So ये थे समीर जी मदन मोहन जी के सुपुत्र.
1: बिल्कुल.
0: And we had.
1: And very very proud to be his son.
0: Yes, very proud son. And
1: ऊपर वाला मुझे हर जन्म में उनका बेटा बना. नहीं, मैं सच ही कह रहा हूँ.
0: तथास्तु.
1: Thank you.
0: I am being little funny here.
1: No, it's absolutely.
0: But that's how the life goes on. You have to live it on.
1: No, we are. देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आज 46 साल हो गए. मैं वो जब गुजरे, मैं 14 साल का था, आज मैं 60 साल का हो चुका हूँ. तो वक्त निकल गया, पर एक चीज जरूर है कि जितना उनके जाने के बाद उनके म्यूजिक को अप्रिसिएशन, इट्स अनबिलीवेबल. मैं आपको बता नहीं सकता. इट इज सिंप द वे ही इज रिस्पेक्टेड बाय द यंगर जनरेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ द सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स. उनका नाम जब कहीं लिया जाता है तो लोग इज्जत से सर झुकाते हैं अपना. ये अजूबा है. दिस इज अ मिरेकल, एब्सोल्युटली. एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड हिज फैंस फॉर दैट.
0: Yes, yes. Thank you very much.
1: Thank you, Ekta ji. Thank you so much.
0: तो ये थे समीर जी, and I hope कि आप लोगों ने enjoy किया हमारी chit chat. Because ये थोड़ा सा sun का problem, ये वो बहुत कुछ चल रहा था, but we had an amazing life journey of Madan Mohan ji. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि starting में I was stammering, I don't know what to say. मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए उनके लिए. बट जब उनके बेटे से बात की तो अच्छा लगा कि समीर जी ने हमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी से हमें गुजारा. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.
2: तो जी हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आप अभी कुछ अनसुनी बातें सुना जो ये महान संगीतकार मदन मोहन जी के बेटा समीर मदन मोहन कोहली जी ने आप श्रोताओं को सुनाया. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. तो ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत.

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदम थोर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो उक्त बलस्त्र फिया द प्लस रेडियो एंड नतिलक इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवनमेंट और खानिशात और ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज़रूर उसके बारे में कॉमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ज़रूर ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यार हो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तैरेंस कंटोर यूरोप नो सीवन तक डिफेंस तक ट्वेंटी, या तो आप तार करें अपने सीवन तक ट्वेंटी। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें आप नो सीवन तक फेर तक, या तो आप नो सीवन तक ट्वेंटी तक पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे तो फिल्म आग का दरिया जो रिलीज किया गया था नई घंटी नई घंटक में, और इस फिल्म में दिलीप साहब जी ने काम किया है मलकाए हुस्न ब्यूटीफुल अभिनेत्री द ग्रेट रेखा जी के साथ, साथ भी काम किया है राजीव कपूर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का। कुछ गाने रह गया था सुनाने के, तो मिलके सुनते हैं छम छम फ्रॉम द मूवी। ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में मैं रख चुका हूँ प्लेयर में सुनाने के लिए। महान गायक कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण जी ने मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं आप श्रोताओं के नाम।

मूफी आग का डरिया दिल है लूटने को तैयार। मशहूर गाने वाली कविता कृष्णा मूर्ति और अनुराधा पौडवाल कोरस के साथ मिलकर आठ श्रोताओं को ये तीसरा सुंदर बयान सुनाया। कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल अल्फाजे थे राजेंद्र कृष्ण जी का। अगला बयान गोरिया उसकी दीवानी क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में अल्फाजे राजेंद्र कृष्ण का कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

beautiful song from the movie आग का डरिया, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के मधुर आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज और अल्फाजे थे राजेंद्र कृष्ण का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ओटिस गोट नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने काम किया है, तो एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म आग का डरिया, और इस बार नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल के ब्यूटीफुल वॉइस में ये अति सुंदर बयान की रिश्ता ये मोहब्बत का। एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँच पर और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का।

रिश्ता ये मोहब्बत का निभाना है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साइंस पर सुनाया आप सभी को नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल अल्फा से थे राजेंद्र कृष्ण का फ्रॉम द मूवी आग का डरिया। तो मैं प्रिय श्रोताओं सभी नगमे एडू फिल्म आग का डरिया मैंने आप श्रोताओं को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1999, फिल्म सौदागर। इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजकुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न, मनीषा कोयराला और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में काम किए हैं दिलीप साहब जी के साथ। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और लेखक है आनंद बख्शी। तो फिल्म सौदागर में से आप नगमे आप सुनेंगे इमली का बूटा बेरी का पेड़, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को मशहूर गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले।

अति सुंदर बयान इमली का बूटा बेड़ी का पेड़ एंड फिल्म सौदागर मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे थे आनंद बख्शी का। राधा नाचेगी फ्रॉम द सेम मूवी सौदागर 1991 और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी साथ दे रहा है। महान गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे है आनंद बख्शी।

Radha Nachegi from the movie Saudagar. Manisha Korailakaye, super hit movie with Dilip Kumar and Raj Kumar. Anand Bakshi ke Alfaze, Lakshmikant Pyare Lal Kesaj. Aur gaane wale the Bharat Ratna Queen of Melody, Lata Mangeshkar aur Mohammad Aziz. Saudagar sauda karke dil ले ले दिल देकर, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को तीन मशहूर गाने वाले ऐद यार निखंत, कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं. आनंद बख्शी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

Băiane, title, song from the movie, Soul Dagger, Dillele, Dill Dekar, beautiful song, Kavita Krishnamurti, Sukhwinder Singh, oh, Manhar Udas, Tino ne Milke, Yati Sundar Bayan, ko sunaya aap sabhi ko, Anand Bakshi ke alfaze, Lakshmikant Pyare Lal ke saath. तुम्हारे पिपरी श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में, शेयर्स है यारो। खुदा ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, एक दोस्त को मुझसे मिलाया ना होता, जिंदगी हो जाती हमारी बेजान, जिंदगी हो जाती हमारी बेजान, अगर आप जैसे दोस्त को पाया ना होता। क्या बात, रब ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है, इस जहां में कोई हमारा नहीं है, छुआ उनका दामन तो वो हंसकर बोले, छुआ उनका दामन तो वो हंस कर बोले, दोस्त ये दामन तुम्हारा नहीं है। हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, अफताब तुझसे नूर उधार मांगे, रब करे तू दोस्ती ऐसी निभाए, रब करे तू दोस्ती ऐसे निभाएं के लोग मुझसे तेरी दोस्ती उधार मांगे। क्या बात, दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती, इससे अच्छी कोई तस्वीर भी नहीं होती, एक नाजुक प्यार का धागा है, एक नाजुक प्यार का धागा है दोस्ती, फिर भी इसे पक्की कोई जंजीर नहीं होती। गुनाह करके सजा से डरते हैं, गुनाह करके सजा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों की वफा से डरते हैं। और हो जाए, दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो है जो आपके घर आए और कहे आज क्या पका है, जो भी है जल्दी से ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। ये था कुछ दोस्ती के बारे में शेर शियारो। नहीं रुकती तेरी याद आती है, दर्द से भरा हुआ ये अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है महान गायक अयदियार तख्त नीखत द ग्रेट सुरेश वाटकर। अल्फाज है आनंद बख्शी का और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है। अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला सॉन्ग सुनाया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दिया महान गायक सुरेश वाटकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर अल्फाज थे आनंद बख्शी जी का। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावे कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी ताल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों,

ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

0: प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों स्थित रहता है, अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, वाह वाह क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों
1: मित्रों एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है, सुनिए।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं? पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना? वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार। पास हो गए तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप किसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप बड़े ध्यान से सुन

सुबह का नया नजराना ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा, जागो उठो तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम, नमस्ते। धर्म कर्म फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो का सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए। फा ऑन के टीम की ओर से आप सभी को एक शुभ दिन प्रगट हो।

ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा। सभी भक्त प्रेमियों के लिए मैं एक राम भजन, रघुपति राघव राजा राम सच्चम शिवम सुंदरम, ये सभी भजन आप सभी के लिए मैं पेश करता हूँ।

जी के निकली सवारी के बाद अब की बार हरी सुंदर नंद मुकुंद कृष्ण भजन चलेगा प्रोग्राम में। हर एक भक्त प्रेमियों जो कृष्ण का पूजा करते हैं या कृष्ण

सभी को एक शुभ दिन प्रगत हो। भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दिन फूलों की तरह महकते रहे।

कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि धोखा देने वाला इंसान से कभी बदला ना लेना। जिसने तुमसे विश्वासघात किया उन्हें याद उन्हें जाने दो, जिससे तुमसे विश्वासघात किया उन्हें जाने दो। वक्त उनसे खुद बताएंगे कि किसी सच्चे इंसान के साथ खेल खेलना कितना बड़ा धोखा है।

हरिओम। धर्म फार्म इंसान जो के सुभाग के भजन कार्यक्रम धर्म कर्म आप सुन रहे हैं। अगर आप ये भजन कार्यक्रम स्पॉन्सर करना चाहते हो तो आप तार कीजिए हमारे दफ्तर से न्यूल सीफन तक दृश्य फीर सीफ। हमारा तार के नंबर है

जीत सिंह, जगदीश सिंह मिस्त्री फिल्मी गाना गजल, लेकिन बहुत से भजन भी पेश किया है। सभी भजन में से एक और जगदीश सिंह फाफड़े से मैं निकाला हूँ, बन के बिहारी, आप सभी के लिए।

0: श्रम करम फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के भजन के कार्यक्रम में आपकी बार राम भक्त श्री हनुमान स्वामी जी का भजन प्रोग्राम में आप सुनेंगे।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

उम्र के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहां पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी के सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।

फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, जबकि रमजान का महीना है तो हम सभी रोज़ादारों को और जो ख़ास वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं उन सभी को हम माहे रमज़ान मुबारकबादी अर्ज करते हैं। और ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी बनारस से आप सुनेंगे

की आवाज में भी आप सुन रहे थे पूरब से जब सूरज निकले, फ्रॉम द मूवी बनारस से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।

लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। कुछ मिले जुले गीत के साथ हम आप सभी की सेवा करने वाले हैं और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में श्रद्धा जी आपको सुनाने वाले थे। द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। फ्रॉम द मूवी सूरत और सीरत से आप सुनेंगे।

बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। अभी आप सुन रहे थे दमायती मुकेश जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी सूरत और सीरत। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इम्तिहान से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी इम्तिहान से हमने पेश किए है माझी नैया ढूंढे किनारा, उपहार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द माइती मुकेश जी की आवाज़ में

0: उपहार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं माझी नैया ढूंढे किनारा। द माइती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। पिया बसंती रे काहे सताए आजा।
1: छोटी सारी चाय गिरा दी।
2: क्या हुआ क्या?
1: देखिए ना बाबू, देखिए ना, सारी चाय गिरा दी मेरे ऊपर।
3: भाई गाड़ी ठीक हुई क्या?

0: पकड़ो उसको।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रिया यानी पिया बसंती रे काहे सताए आजा। कहना है आज तुमसे पहली बार प्रीता मजुमदार और बाबुल सुप्रियो आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कहना है आज तुमसे पहली बार, बाबुल सुप्रियो के साथ में प्रीता मजुमदार जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दिल विल प्यार व्यार। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह,

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा हाय दुपट्टा फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। और ज़रा सा हम देखें एक और दुपट्टा का सॉन्ग हो जाए, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से।

अभी आप सुन रहे थे लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, और फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगे। आपको सुनाने वाले थे अलका याग्निक उदित नारायण जी के साथ। बात होती है जब दुपट्टा का तो चुनरी क्यों ना हो जाए। आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1 से हम पेश करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम, अभिजीत और अनुराधा श्रीराम आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। अखिया गुलाब, जी हाँ, गीत का बोल है अखिया गुलाब और फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं और ख़ास करके ये गीत कुमांग किए हैं प्रकाश दामरी जी, तो प्रकाश दामरी जी के वास्ते ये सॉन्ग हम पेश करते हैं।
1: लाइन मार रही हूँ,
2: लाइन मार रही हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे अखिया गुलाब फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं प्रकाश डमरी जी के वास्ते। शाडा इसरी जी भी ये प्रोग्राम को सुन रही है, तो शाडा आप ही के नाम हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।
1: Brothers for life, Nick Garson.

अभी आप सुन रहे थे दमादम मस्त कलंदर। सुनने वालों, जरा मैं आपको बताऊं कुछ बातें कि यहाँ पर बैठे बैठे मेरा गला सूख गया है आप सभी से बातें करते करते। तो क्यों ना कोका कोला हो जाए, जालिमा एक कोका कोला पिला दो ना।

अरे शाली माँ, कोला यानी कोका कोला ना सही तो पानी भी जरा सी पिला सकते हो आप। सजना वे सजना, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। और शारदा इसरी जी से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वो कोई और गीत मांग किए थे और मैंने कोई और गीत चला दी। क्षमा करना यार। तो चलिए ये हो जाए आपका सॉन्ग।

अभी आप सुन रहे थे सजना वे सजना, और ये सॉन्ग हमने चलाए हैं शारदा इसरी जी के वास्ते। अभी अभी एक कोका कोला सॉन्ग आप सुने हैं, तो ये क्यों ना हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे जब भी देखूं बना ले लाल पीली अखियां, फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। शहजादा है फिल्म का नाम और गीत का बोल है छेड़ खानिया।
1: William Byrne.

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी शहजादा से छेड़खानियाँ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जी आदत ताई तल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

बातों में ऐसा उलझा दिया द टाइटल हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, और क्यों ना एक ठुमका हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार शो मीडर ठुमका, और ठुमका के बाद तौबा क्यों ना हो जाए, हुस्न तेरा तौबा तौबा।
1: मनीषा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हुस्न तेरा तौबा तौबा फ्रॉम द मूवी बैड न्यूज़ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले थे करण औजला।

बार ये कह दियो कि आजा तुझे प्यार करे, फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आपको सुनाने वाले थे उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। मैंने दिल तुम्हें दे दिया, अलका यज्ञिक के साथ में सुनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।

मैंने दिल तुम्हें दे दिया ओ सनम फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किया है अलका याग्निक और सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं इसी फिल्म से आप सुनेंगे तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम।

बेकरारी ए मेरे सनम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था राजा, एक थी लड़की दीवानी।

आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अभी आप सुन रहे थे। पहली पहली बार

प्रोग्राम को जारी करते हुए सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, पिया बसंती रे।

हमें सुनती रे कहे सताए आजा, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। जबकि मौसम इतना अच्छा है तो क्यों ना ये सॉन्ग हो जाए फ्रॉम द मूवी थोड़ी सी बेवफाई।

मौसम लवली मौसम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी थोड़ी सी बेवफाई, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। और जबकि मौसम की बात होती है तो चलिए ये गीत हो जाए फ्रॉम द मूवी तोहफा से हम पेश करते हैं, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम।

अभी आप सुन रहे थे अलबेला मौसम कहता है स्वागतम फ्रॉम द मूवी तोहफा से हमने पेश किए है अदालत है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

अदालत है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश की है ओ तुमसे दूर रह के। चोरी चोरी कोई आए फ्रॉम द मूवी नूरी से हम पेश करते हैं।

रहे थे फ्रॉम द मूवी नूरी से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे।

साथ हो जब अपने फ्रॉम द मूवी कालिया से हमने पेश किए हैं दिल लगी निधि हवा।

दिल लगी ने दी हवा, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश किए हैं। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान।

मेरी जान, अभी आप सुन रहे थे और ज़रा सा हम देखें मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं शारी शहर में आप सा कोई नहीं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, ऐसे

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: आशिक

0: सारे शहर में आप सा कोई नहीं, अभी आप सुन रहे थे हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी।
1: एक नहीं तीन थप्पड़ मार सकती है, वन टू थ्री का।
2: वेरी स्वीट।
1: यस आई एम वेरी
2: स्वीट। तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो?
1: टाइम देख रहा हूँ।
2: तुम टाइम देख रहे हो? ओह मैं समझी तुम टाइम देख रहे हो।
1: क्या हुआ?
2: मैं जाती हूँ, तेरा बाप मुझे
1: काजल।

दिल लेके दर्दे दिल दे गए फ्रॉम द मूवी वांटेड से हमने पेश किए हैं। सुने वालों, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, अरिजीत सिंह आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो।

रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी। अभी आप सुन रहे थे फटा पोस्टर, यानी फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।

मेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। द डर्टी पिक्चर है फिल्म का नाम।

तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी द डर्टी पिक्चर। अतीफ असलम आपको सुनाने वाले हैं दिल मेरी ना सुने।

दिल मेरी ना सुने, अभी आप सुन रहे थे अतीफ असलम की आवाज़ में। सुल्तान है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जग घूमिया थारे जैसा ना कोई।

जग घूमे आठारे जैसा न कोई, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सुल्तान से हमने पेश किए हैं। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे।

मेरे नैना बड़े काते हो मार ही डालेंगे अभी आप सुन रहे थे फलक तक चल साथ मेरे।

फलक तक चल साथ मेरे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दशन से हमने पेश किए हैं। सजदे की यह है लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। खट्टा मीठा है फिल्म का नाम, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और फ्रॉम द मूवी फिदा से हम पेश करते हैं

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरिए नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है और वो है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो तू दीवाना के बाद हम तुरंत चलते हैं भैया सूरीनाम देश में। हम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड में अन्य देश में होंक बाल बड़ा जोर हुए भैया अमेरिका का खेल है, लेकिन सूरीनाम में भाई होंक बाल कुनेपल से मारी से गो ई भाई करके बड़ी दुख के बात है भैया। बाल खेल वाला चीज से और मारी से आप लोग को पता है दोस्तों कि यहाँ नीदरलैंड में निक्स इन ये कॉफर मीनी में सूरीनाम में सबन कटलीस ले चले है, लाठी ले चले, टांगा ले चले कि कोई से झगड़ा लड़ाई हुई तो उसे सबन लड़ सके। और यहाँ पे नीदरलैंड में सबन और होन बाग खुनेपल धर के चलत रहा पहले के जमाना में कि जब मैं तो किसी सिपाही सर रास्ता में पकड़े तो ना बोली तू वहां पर ले के चले है वन देते इसमें स्पोर्ट धमाके में दार इस ओक फरबोधन में से ओकर बारे में भी यहाँ सिपाही बड़ी जोर तोड़ से ताके लगल है कि तू होंग बाल खुनेपल ले के तू वहां कहे धले तू जा बाल खेले कि ओमा परमानेंट रहे नकरे के खून अंबुत में से सो इस बाकी सूरीनाम में हम ना फरवाक कलरी की होंग बाल कुनेपल से कोई मारी से भैया एगो ई बाइकर के लीली दौरब व्यक के बात है हमारे मौसी तो एगो बोले हैं एगो ई बाइकर बोले है का लीली दौरब व्यक में भैया चोटाई गए हैं बोले खराग बेन पोकिंग टोन बरूफिंग होंग बाल से कोई बरूफ करता भाई एगो हम मस्कर द मन और कर हाथ में ना पिस्तौल ना ना छुरी रहा ना कटली से रहा मौसी ओकर हाथ में रहा और कुनेपल रहा भैया और ओही से भैया मारी से ई बाई करवा के मारी से और बोले मारवेस निच बैठ तमाकर मारिस तो बकी ना ओकर ई बाई को चोराई पाए इसने कुछ ले के भाग पाए बकी अदमियान चोटाई गए भैया चोटाई गए है बोले हैगा 11 बजे रात के बात है एक सब बरूफ करी से बोले कर वेल है लाख तो फिर ओकर मुड़ी वेल फड़ के भैया मुड़िया पे मारी से और ई बाइकर चोटाई गए है हमारे मौसी तो जो कोई देखियो होंग बाल लेके चले तना सोचियो जा बाल खेल उसे सूरीनाम देश में सब रूफ भी करे लगल है उन दंग से खबरदार इंसिडेंट लाख द फरदख्त एंड नीट इन इट्स वक्त नहीं मन और दोस्तों एक बेन फलोपक नीट ऑफ द फेसबुक लाइव ऑन

रागी को हम अपना प्रोग्राम लेकर चलते हैं। हम चली ना भैया संतों की, चांद संतों की तो आज दुनिया में ना है, लेकिन सूरीनाम देश में सबन उकर एको बोर्स बिल्ड बना दी से। और एक बारे में कभी कोई जमाना में निकेरी के यानी कि दुखी बोले रहा, बोले आज दिमानी इस बोले वर्तन बिल फॉर हेम कमांग, और यहाँ पे फी हैप्पी उकर बिल बनाई के धर दी से अन बोर्स बिल देन फन चांद संतों की। एक बारे में फी हैप्पी के अंदर फोर्सीटर आशीष कुमार गोयानन बोले हैगा संतों की के तलातन फॉर एवखन एन एंकल बोर्स बिल्डन गया दिन सेख दत अलल लीडर्स दी बे द फी हैप्पी हैवन uitgedragen moeten worden erkend gerespecteerd en gewaardeerd। बाकी एकर बारे में और कुछ यहां लिखल भैया की बोर्स बिल्डवा के बारे में लीफरांसीर जो रहा बुटलैंड के है भाई गस्प्रेकन वर्दन गफूड में ते लीफरांसीर इन हेट बुटलैंड मर गया दिन स्टिल दत ओक मार मोगलिकहेदन सल वर्दन गकीकन en deze borstbeelden door lokale kunstenaar te laten ontwerpen. Toen hier betekent, ik heb in het kader van de week met vrienden van de partij gesproken en die zijn bereid te werken met de leverancier van een aantal borstbeelden uit het buitenland aan zo'n project. Dat heeft allemaal via Gayadin Bolise. Toen hier betekent, dus toen instemmen dat ook een formaat van de borstbeelden en hoe deze er precies uit moeten zien, al die zaken moeten nog geplaatst worden. Ik hoop mensen dat een goede kunst naar dit kan maken. Want hem vind ik er zelf persoonlijk dat de beeld van Jagannath Lakshman niet precies is, mensen. En het moet iemand zijn die niet meer ervaren en goed de beeld moet gaan maken. ये बात है हमारी जनता, हमारी प्यारे प्यारे जनता। एक आदमी भैया इन 50 यार के अपन धान के खेत में वो मर गए भैया। धान के खेत में अगर जब धान के बातचीत होवे लगल है तो दोस्तों हम लोग तिरक चुचिला निकेरी के एंड दैट क्लॉप्ड ओक मैन से क्वारंटाइन पोल्डर के बातचीत है हमारे जनता। क्वारंटाइन पोल्डर के बात है तो क्वारंटाइन पोल्डर में एगो 51 आदमी के लाश जाने लाइक मिलल है क्वारंटाइन पोल्डर में हमारे जनता। तो ये बात है निकेरी के। तो साथ साथ दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर आगे को बढ़ाते हैं। हम जानते हैं फेन फेलखाइस रात के हुतू के बारे में जो सऊदी अरबिया में जाई के और मांगत रहा जहां हज करल जाए ऊपर एगो ड्रोन दागे रहा। अब लेकिन अफेयर सिस्टम जो है सऊदी अरबिया ओके सका कर दीसेगा कि जो अल्लाह के घर है वो तमाम अल्लाह के घर ना अनप्लॉफ हुए। तो यहां बताए गए हैं फेल खैस रात जो है ऊपर और देल करी से गए कि हुतू अनफॉलो ऑफ सऊदी अरबिया के बारे में हमारी जनता। फेल खैस रात जो बोले हैगा ये यमन में है जो हुतू से एगो खबलदान ग्रुप है मेन से और जो इस सब जाए के सऊदी अरबिया में दांगे है द लीडन फॉर फेल खैस रात फॉर और देल इन द स्ट्रक्स्ट मोगलक woordingen de Hutus aanvallen om de koninkrijk Saudi-Arabië op bolehega Iran ik help krijgen Hutus ke en rukten recentelijk op in het zuidwesten van Jemen. Ook voerden ze aanvallen uit op Riyadh en de voor olie-export belangrijke Saudische havenstad van Yanbu. Toen hamari janta is hebben maand he ladai ego na don hove he buitenland me Middellandse Oosten me और यहाँ पे दूसरा तीसरा आई के और शुरुआत हो जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब देखो भैया आने न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में भैया वहां पर अब गैल है चीनी प्रेसिडेंट यिंगपिंग हुआ गैल है और डोनाल्ड ट्रंप भैया ओके भरी स्वागत करी से बहुत स्वागत करी से फेलिसिटेट अमेरिकन से फॉलो फॉर 250 verjaardag van de onafhankelijkheid.

ये था रॉबी उदित नारायण का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों जो आपको हमने बस सुनाई दिए हैं। हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम की लेकर हमारे यारो हमारे दोस्तों। अब देखो भैया एक बरिस के बिटिया बेबी भैया एक बरिस के सी एक आसन बेबी एक बरिस के लड़का सूरीनाम में बुढ़ के मर गए भाई। तो बोलिए जॉनी उतो ना गए हुई पौड़े तिस्खीन खरपन से इंदर दांत उपौड़े ना गए बाकी एक बल्टी पानी में बिचारी गिर गए और उमा ये लड़का बिचारी मर गए है। बहुत दुख के बात है तमाम रेडियो फाहुन के ग्रुप इसके दुख में हम शामिल है। इन यार हमें बुधवार के अपन घरे एक बल्टी पानी में गिर गए है। ई बात हुए क्वाकार स्त्रात में सूरीनाम के ई फ्रांसी खन के गोसा स्त्रात है और बोले फुरनोमन वार्ड के एक बरिस के लड़का बुढ़ के मर गए बल्टी में भैया। अब खैफत मोनेबली से इन वास रेंट वार इन मेट वाटर खफिल द एमर स्टोन फरमुडलक प्रोबेर दे से इच आई द एमर द पाकन एंड फील अपन लड़कन के मोई से देखियो भैया। एक बरिस के लड़का अपन जिंदगी में बिचारी कौन चीव देखे रहा और वो गुजर गए है भैया गुजर गए है और बहुत बहुत दुख के बात है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता। अब देखो एगो नईखन तीन यार के गुमान के लड़की लाश हो गए सूरीनाम में मौसी 19 बरिस के लड़की लाश हो गए सूरीनाम के बांचित हुए है जेकर नाम बा लेडीज अनाबेल बालसेंदे मार्टिनेस इन सूरीनाम। बताए गए है का 3 महीना हो गए ये लड़कियां लाश हो गए है परिवार बड़ी दुख में है और सब एक मिलजुल के खोजे है। द मुदर हिप शेख मेट आंद्र नोट ओप्रो खवेन में नियो और बोले हैं एक्स्ट्रा डीड इन फॉर हर बसौरख्त है इन द टेलीफोन फॉर हर डॉक्टर दिस ऑफ फॉल्स द मुदर मोमेंटेल इन हंदन सैन फॉर मन दिस एन आइसोलेटन अंडेड आज ब्लाका ओकर माई एगो आदमी संग एकर भलाका बोले है स्टार्ट ऑफ एंकल फोटो दिस फैमिली ही फर्स्टरक द मदर से दैट हर नीट लुक हर डॉक्टर सेल्फ टू स्पीक एंड देयर इज एक्टर गेन बेवेसिंग दैट दिस मैन अस्ट्राबार फेट ही प्ले की बोले ओही ना ओके लेके चल गई हुई बोले है 2 तारीख दिसंबर से लाश भेले तो बोले हैगा खबरन ऑफ 27 दिसंबर 2006 सांटियागो क्यूबा में और बोले फर्ट्रैक वोंड से हर फैमिली इन सैन माइकल in padron in havana me obole he kumandi in suriname woon in mensels kuba ke admi dheer suriname me rahe bhaiya aur ye sab chi to hota hai dukh ke baat hai 19 barish ke bitiya koi laash hui hai bhaiya to bahut bahut dukh ke baat ab dekho bhaiya dj fry khalatan mensens smuggle ke baat hui admi ke naam ba dj na baje wala nani ekar naam hue hai dj rs sipahi bole he ka baswar khama tegen verder vrijheid feit beneming advocaat John Maury Neptua hey bhaiya batai gayi hai 16 tarikh september ke bole ke pakdi se under mein mention smoker and mention handle ke bare mein bole hai ga ye namiya karat raha aur jane mention handle ke bare mein kaise hamare janta hum jai reslan bhaiya reslan badmansi kare bahut din se poothe nuak boli la nani ukrainer pe daage ab u apan plane उड़ावे भैया जो नाटो हैगा नाटो के ओम खैफिन में उड़ावे कहने पोलैंड के खरेंज पे उड़ाई से और का बोले हैगा अब यहां बतावे स्विस एंड फिंस खफेक फ्लिकटेकन से डोंडरदाग uitgereik ओम रूसीसे मिलिटेरे लुकफार्टेकन तो अंडर स्केपन मेल द फिंस लुक्टमा दी फ्लोग बोवर द इंटरनेशनलले वाटर फ्रॉम द फिंस गोल्फ उस सब गईले स्वीडन को फिनलैंड के बोले है गए को ग्रुप रूसी से तो स्टेलन स्टेलन फास्ट दैट इट किंग ओम मेदर गेवेक्ट फ्लिकटेगन एंड द ट्रांसपोर्ट फ्लिकटेग स्वीडन जो ने फिनलैंड है गा बेदन हम लोग के नाफो लेत है वर्कन सामन ओम लुक्ट्रेम द फर्दीगन एकर बारे में फिनलैंड बोले इस तक के द लैंड गसामलिक सो इन आइडेंटिफिकेशन मिशन uitvoerder मेदर नाफो लैंड ओस्ट नो एंड ओस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ओस्ट यूरोपा हैवन अफगलोपन मानन मेलने खमा रूसलैंड स्कैनिंग इन द लुक्ट्रेम और हम मांगले जाने हम लोग के फेयर लीडर जो हैगा और मारक
तो एकर बारे में का बोले हैं, कई ना एकर बारे में बोलत रहा। अब देखो भैया 6.6 मिलियार्ड यूरो के बारे में यूक्रेन के सबन फ्राई करे से एयू और भरी के नानी हम लोग के बालास्टेंगवा भरीगा। शुक्रवार के से स्टेम करी से यूक्रेन के 6.6 मिलियार्ड फ्राई करी से मिलिटेर अंडरस्टैंड करी से जो रसलान से लाई हुए हैं एयू बैतलांसे शेफ काया कालास अब एक से गेल्ड ओम कम फ्राई uit de Europese Vredesfaciliteit EPF's ke bare mee. Orbole 4,7 miljard is bedoeld voor de EU-landen, zelf waarvan sommige landen volgens hun volgend kalas hebben aangegeven. Toch maar de genta aanplukken hem. Bas samachar sunate hi rehte hai. हमारे जनता आप जोन आदमी यानी कि बैचलांत में है अमेरिका में है तो मंगे सूरीनाम के पासपोर्ट तो हुआ जाए के बनवाई सके है। यह बतावे सूरीनामर्स दी इन हिन बैचलांत अन क्राइकन अन न्यू मोकलक है ओम हिन पासपोर्ट साकन अफ त हंडलन। और बोले प्रेसिडेंट सिमोन बुधवार के न्यूयॉर्क में पासपोर्ट में बोली से बोले हैगा Application service officieel gelanceerde dienstverlening moet het aanvragen van een Surinaamse paspoort toegankelijker en efficiënter maken, terwijl de beoordeling, goedkeuring en de uitgifte volledig onder verantwoordelijkheid van de overheid blijven. Dus de Surinaamse paspoort van je vanuit de New York meer is het nu wel mogelijk van afgelopen woensdag. Maar het paspoort blijft Surinaamse staatsdocument. Ambitie reikt verder naar New York. बहुत लंबा चौड़ा लिखा ले जनता इसके बारे में आप जानियो मंगियो जाने कैसे हम न्यूयॉर्क में बनावे सूरीनाम के पासपोर्ट दान मुझे यूली एवं तोह अने एवं ऑफ द वेबसाइट फन ओवरहेड खान सूरीनाम के कर्जा भैया प्लाफोन हबड़ा कर दे इसे नानी प्लाफोन वहाँ हबड़ा कर दे इसे स्टार्सकल फन सूरीनाम यूनी 2026 में Bolle daalt eraan, maar blijft ruim boven een wettelijke plafond van 60% van het bruto binnenlandse product. Volgens de wettelijke berekening bedroeg de schuld van 119,6% van de BBP. BBP kan met lepje jetrat ook inkomsten, dus waarom aanwee he. Jetrat export oorzee, jada toke namake kardaleweke. Bakke is op deze pahile bouters getijd pe plafond wou verschrijden kardera is op pin kardese bhaiya. कर जो आप बहुत जबरजा है और उसे संबंध द्विंगी करे कुर्सुआ बचावे के मैं कर जो तो सबके चाहे भरे के द श्री नाम से एक नोम बोले हैं मेल की देर तक तो बुलेटिन है द स्कूल्ड ने फॉलोइंग वेटलक डेफिनेशन मार्च में नो 121,1% लाख रहा यूनि में बोले 119,6% और बोले फॉलोइंग इंटरनेशनल Die daalde de staatsschuld in dezelfde periode van 76,6%. De koets economie waren met Suriname ke aanplop kohambuli betaalde. Want de economie van Suriname gaat niet goed, mensen. Gaat niet goed. Heb de koop van Suriname. Ban jane to jane charo bagal koi ke dukandar hai. Saban wachter dhare bhaiya nikeri ke or hum jayla nani. Nikeri mego dukan ke naam ba Freddy Rishi. वेक में हुआ पे गो वाक्तर के हाथ गोड़ बांध के सुता है रहा चोर भाई निकेरी खलेद आन हो दें बोले द खबरदार खबर ऑफिंग बे द विंकल सा बोले हैगा न आगे 45 यार के बेजी तेज रूफ वेर द वाक्तर के कनीक फल अख्तर खलातन तरवेल द दादर एर मेट एन ग्रोट गेल बदला सुरिनामसे डॉलर फन दोर गिंग और बताएगे डीपस्टॉल मेट खवेल 78 सितंबर के बांध चित हुए रेशर्चे पकड़ी से और हम तो सोचे निकेरी बहुत फैलक भैया निकेरी हम जाहिला तो फैलक फूलक करेला लेकिन अब देखो निकेरी में का हुए लगल है ये बात हुए गए सैरान वेख निकेरी एं फर्फॉल्क्स आन खाउदर में पकड़ाई गए हैं पैसवा खेल्ट वे नीट बे हैं मान खतरोफन पैसवा ना पैसे भैया तो पैसवा कहीं हो लोल खोद के गाड़ दे ले हुई मौसी तो कहां से तू पइये ऊ बोलिए हम जहलिया काट ले आबे तो फिर मौज करब तो
ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता। हम जाना जीनी जीनी विजयनवती।

हुई गे भैया, पतरा हुई गे, छोटा हुई गे है। तो झीनी झीनी के बाद अभी आप लोग को और कुछ न कुछ हम बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं सूरीनाम में। तो लोन जानो है रोमानो मेरिबा के बारे में। बन रहा भाई कितना दिनी बाउतर्स के भैया क्लाइन जोन है, और ये बन रहा रूफ में और कौन ची के जब जोन से में बेकर जाने बाउथर्स जब बनल है प्रेसिडेंट एक छोड़वा दे रहा भैया। हाँ तो अब रोमानो मेरिबा बन गए रहा ले भैया एनडीपी में, मकी अब ये रमिया ना तफरीद रहा एनडीपी में नानी। अजय तू एनडीपी में ता तफरीद बाटे ना मुझे वत खंदून। तो ये रमिया कांकरी से रोमानो मेरिबा बोले एगो पिन धर दी से बोले अब हम एनडीपी के लेते ना बाटी वुर्स दाख 23 सितंबर के ये अपन लेत माचखाप एनडीपी के बोले हम ओमा से बोले हम अपन इन ट्रैक कर ले ली बाटी बोले trafas de dat mel trafas de bole merhiba heeft zijn besluit schriftelijk kenbaar maken is NDP voorzitter Jennifer Gerling Simon president bole in zijn brief benadrukte hij dat zijn vertrek niet ter gevolg is van ruzie, onvrede of een persoonlijk geschil met de voorzitter of andere leden van partijleiding. Bole volgens merhiba gaat om een persoonlijke beslissing waarover hij goed heeft nagedacht. Al bole ondanks zijn vertrek spreekt hij waardering uit de periode op het aanwezig hij e merhiba niet kregen van je omdat ik kijk op positie ussie naar Milala Bay. Hij is de pleegzoon van Weilen, ook president van de voormalige NDB voorzitter Desi Bouters. Zijn verleden kwam meerdere keren in de nieuws vanwege strafzaken 2005 met Pandra Bariske Jalpaila voor onder mijn roofkaler uit Jan Semare op Bouters 2011 met een gratie verlinker is 2017 met volgde opnieuw een veroordeling oordeling op die 3,5 jaar ke jahal pai se bij roof over paal. Op de afgelopen jaren probeerde Merhiba nadrukkelijk een andere weg in te slaan. In 2023 behaalde hij zijn bachelor. Kini se kontje bhaiya patana bole haal kari se aur bole mangela badhiya aadmi bare bole hai ga politieke vorming kreeg in zich beschikbaar willen stellen wanneer de partij een beroep op hem zou doen. To bhaiya ietra ikarba पब्लिक फादर जो रहा और वो हैं बहुत से के छोड़वा दे रहा उतरा जान मारी से और भैया एनडीपी में इतोखरा लेट बन गए रहा। और तुझे ये इतना बड़का क्रिमिनल के अख्तर खरोन जो ने भाई तुझे ये के लेट मत छाप देवे हम जाने ला फोर्स से तन बहुत के प्लीज सुन है दन इज ऑलस कुक एंड ए मेंस सो गात इन सूरीनाम एनमाल। हम जाए ले भैया ब्राजीलियन के मछरी के मछरी ना बरैया के और नानी तीन गो मिंदर आरख लड़कन मंगरवार के जोन बरैया काटी सो के ब्राजील के भैया ऊंच नाई छेती से हर ने तो स्ट्रांड के मानचित हुए नानी एगो बोले दो ने दुई बरिस के एगो 12 बरिस के को 14 बरिस के लड़का के काटी से भैया एम्बुलेंस सब के ले गए हैं बताए गए हैगा ऑपरेटर ऑफ एन खराब मशीन और पे ट्रेन बेचक रहा काम करे में और बोले तेज वर्क समय क्वाम द बेयन फ्री जिस कहीं पे लुकान रहा और खराब मशीन काम कर रहा बरैया उद्यान भैया हुए पे तीन गो लड़कन रहा बोले दी ऑफ द सेल्फ द ट्रेन ओनर वेयर द फॉरवॉकर दो द बेयन आंगवालन और बताए गए है का द बेयन दिस वेयर में इन इन खसकाकल। तो ई लड़कन भैया बड़ा अफसोस के मान थे चिकन हाउस में है अब होप करेला से बढ़िया जाए तिस केंद्र में से अनस्कूल्ड केंद्र दी निक्स हैव गदान। अब देखो भैया 6 यंग सूरीनामर्स गिवन प्लास्टिक वेफ्यूलिंग एंड गेसिख इन 6 स्टोरी डाम पे सबन इतरा बीगे प्लास्टिक भैया। तो अब लेके 6 गोलुंडन इकर बारे में काम करे है मशीन खवेर एंड मस्कर्स इन ऑटो बेरा ग्रासाल्को 6 फरदाख्तन हुआ सब पकड़ी से। दोस्तों हमारा समाचार धीरे-धीरे खत्म होने को हुआ है, एक दो समाचार आप लोग को और हम बताएंगे। एसएलएम क्रेक फ्रॉम ऑफ दिसंबर वेयर फ्लिक टेक फॉर द फॉर लीडर इन एगन कलर
Middellandse Atlantische route mee. Simon spreekt bij VN over de dreigende boskap van de landbouw en herstel. Betalingen van de slavernijkebare mee. Bole, paizwatja, himileke. Israëlke premier Benjamin Netanyahu bouwt Jabbertjelane Baya. Heeft in zijn toespraak tijdens een plenaire debat aan de algemene vergadering van de VN. De meer Israëlische oorlogsdoelen herhaalt mensen. Tot Sapkooi Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva Mangarwaneke B. Algemene vergadering door een Amerikaan Bijlehe. Scherp uitlaat Kerisiga. Bollehega ook een verkiezing door Tjartarik Oktober. Kebabole buitenlandse inmenging Omaba. Lula die zich kandidaat stelt voor de vierde ambtenaarstermijn. Zei de Brazilië niet zal toestaan dat de buitenlandse of binnenlandse actoren de volkswil ondermijnen. De Braziliaanse democratie van de Brazilianen verklaarde hij tegenover de wereldleiders in VN-mensen. Toe jebaan de menorat agenten die fout eer gaan riskeren ons laag bij jou te bekend. Bakita bosa van een bahute jabarikare he nani. Bahute jabarikare he. Keke pakario or keke na pakario.

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 6320 तक सेफ नफेटा फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

हरिओम, एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णा दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम, साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं, यारो सर नामी संगीत लेकर, ये यशोमी लेकर की आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। जहां पर भी हो, घर पे हो या तो मोटर कार में हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश है, मैं हिल फील लेस्टर प्लेजर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट और ऐलान करना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में, फनमांडा टॉट फ्रेडा तेनस कंतोर यूर ऑफ द फॉल टेलीफोन नंबर कंतोर 9 7 3 6 2 2 7 4, और स्टूडियो का तार का नंबर है 9 7 3 2 6 2 7 7। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी टू फॉरगेट है ऑनस क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी, एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फुल टू से ऑलवेज लेटर दरबै फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। तो हमसे पहले आप सुनता हूं एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके रोजीता बहन जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश की। इस तौर तरीके से रोजीता बहन जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है, ये यशो अमीर है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद रोजीता बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे एक खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं, हो सकता है कि कंगन भी छूट चुका होगा ना। तो जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब यही मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। अब ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फिल जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। ए नीत फरखेत है, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, और हो सके तो हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी करते रहना। फनहार्त बेहतर साहब, आप कामयाब हुए हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और हो सकता है कि आज कल या परसों आप कामयाब नहीं हुए हो यारो, तो चिंता के कोई बात नहीं है ना। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ कंट्रोल थोड़ा और जोर तोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी आपके कदमों को दौड़ दौड़ कर आकर चूम सकते हैं ना। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी, नो तो खीफ है वाराणसी सारा थे बोतो अलमाल तय सब स्कूल ऑफ यू वेर खलेट है खून डोर खान तो ये दर बै नियर द फॉल सो सो लो बिलो एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बदंत फॉर हेड लेस्टर।
देश में प्रवेश हो तो हमारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम फैन फकांसी खनित फनोंस लंच एनातुलक लीव एंड लात लीवन। और हो सकता है कि आप और थोड़ा घाम खोजने के सफर पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको भी एक शुभ यात्रा। फैन फकांसी तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को अपन फकांसी एड्रेस इंटरनेट के लेर द्वारा इस दत मुखलक, तो आप भी सुनिए हम लोगों को अपने टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप। सो बेंट यू एंड ब्लेव टू फन अलस ऑफ द हुक्त फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नतीलक हमारे देन हक शेयर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एक फिल्म ललकार रिकॉर्डिंग टू सेवन द कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये तो कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नॉट डाउट इट लीव कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में हमेशा तेरा कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी भी है, तो जरूर एंजॉय कीजिए। और आप सभी को हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड। हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ यही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार रफी साहब।

मुस्कुरालो महफिले सजालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो साथियों, आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, 27 सितंबर 2026 का ये अति सुंदर शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 20 और 21 के दरमियान सेल्सियस था और थोड़ा बहुत धूप भी निकला है, तो मौसम बहुत ही मधुर है। तो आप जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। तो आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ, एक जबरदस्त फरमाइश है ना। कल मैं एक बर्थडे पार्टी पे था, एक बहन जो 65 साल का हुई है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वहाँ हमारा मुलाकात हुआ द किंग ऑफ बैठक गाना, जिसे हम मैस्त्रो संदीप बदलू जी के नाम से जानते हैं, उन्हीं के सास जी का, संदीप बदलू जी का सास जी का जन्मदिन था ना। मीना लक्ष्मण मशहूर गाने वाली है हमारे हॉलैंडिस का। तो कुछ ढेर सारे बातें हुए महान उस्ताद संदीप बदलू जी के साथ, कुछ संगीत के बारे में, कुछ दुनियादारी के बारे में। और बातें बातें में मैं उनको भी कहा कि तकरीबन कितने सालों से मैं हर संडे को सरनामी संगीत का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और Heelgroot succes is geworden. Al jaren doe ik dit en dat weten alle mijn luisteraars. Ik heb hem ook verteld hoe vaak jullie ook naar hem gevraagd hebben. Ook als ik zijn nummers door wekelijks draai. Alles wat er ook van hem op YouTube is, heb ik al gedraaid. Leuke gesprekken ook met hem gehad. Echt een hele groot artiest en als mens ook. Mijn god, geen woorden om alleen maar leuke dingen over hem te vertellen. तो इसे बातें बातें में जब वो सुना कि मैं ये प्रोग्राम को पेश कर रहा हूँ, तो ये अति सुंदर बयान को फरमाइश किया है। उस्तादों का उस्ताद हमारे सरनामदेश का इंटरनेशनल कलाकार बैठक गाना का महा महा गुरु श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी का ये अति सुंदर बयान को मांग रखा है, जो मैं आप सभी के लिए और खास करके द किंग ऑफ बैठक गाना फ्रॉम हॉलैंड श्री संदीप बदलू जी के लिए चलाने वाला हूँ। मिल के सुनते हैं द ग्रेट उस्तादों का उस्ताद माएस्त्रो राम प्रसाद राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में। एंजॉय द म्यूजिक साथियों।

तानी रेडियो पर साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और अब आप लोगों के सेवा में मैं पेश करने वाला हूं द मैन हिमसेल्फ द किंग ऑफ बैठक गाना फ्रॉम हॉलैंड उस्तादों का उस्ताद और महान गायक श्री संदीप बदलू जी के टॉप गाना है ये और आशिफान बैठक गाना हो दानिश्दित है टॉप पॉइंट फन बैठक गाना नमस्तुते जितने बार आप सुनेंगे उतने ही बार और ज्यादा अच्छा लगेगा नमस्तुते रघुनंदन क्लोज टू माय हार्ट

शाबाश जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का पॉपुलर सिंगर द लायन ऑफ बैठक गाना द वन एंड ओनली उस्तादों का उस्ताद देवेंद्र सिंह सिवना जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये ब्यूटीफुल इन्फंसन इस्त निमर्स ऐसे बखिन करियर आप सुन रहे थे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप टून है साथियों रविवार शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जो दौर से सरनामी संगीत चल रहा है अगला बयान द बैठ गाना एंड चटनी क्वीन फ्रॉम सूरीनाम मोतीमाला भोला सिंह जी को लाते प्रोग्राम में और उनका साथ दे रहा है हॉलैंड से रोहित महाबली बिल्कुल नया नया सॉन्ग है न्यू न्यू न्यू धीरे धीरे और हेरवा हेराई गए ले एंजॉय द बैठ गाना म्यूजिक

Podcast, hey. 27 September 2026 kay Radrika programa sunre hey, hey. Sabi ko happy happy Sunday, happy happy weekend. एक मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:00 तो जहां पर भी जिस हाल में हो आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सो सो लो बिलो बियॉन्ड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतिलक बदंत फॉर हेट लिस्टरन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइजे, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, दें कन्फर्म ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत, सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना हम लोग मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हन देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल फन मान डॉक्टर फ्रेडर टेडेंस कंतोर यूरो अब द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07362247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07362247। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेन फन हार्ट वेलकम। और चाय और कॉफी तो हमेशा आपके लिए तैयार रहता है 07362247 पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिकलाम बनाते रहना, और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। तो इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बेन दिनों खिलत फनफा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश भी निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एन नतीलक है वो ओक उनसे एक करा ओक कृपया वार हेल फील अमरूपर एंड अमरूपस्टर्स लाइफ अने सिंग सेंग एंड वे बन पार लोग ऑप्ट्रीडेंस अख्तर द रुग फॉराल फरीद वीक। Dus afgelopen donderdag hebben we ook live karaoke op de radio gepresenteerd, wat heel leuk was en heel goede respons tot nu toe. Dus vertel me waarom honet jij elke maand het laatste donderdag van elke maand hebben we vanaf 6:00 s'avonds live karaoke bij Fahon Hindustani Radio. Remember that? Or apne साथ ही हित प्रेमियों को लिखास को भी इतला कर देना। एंड सो अस वेले सेगे वे ऑफ द रेडियो फॉर ऑल सेन द प्रीमियर। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत का, कुछ चटनीस, कुछ बैलेट्स और कुछ जबरदस्त नंबर्स लेकर आया हूँ आप सभी के खिदमत में। पहला बयान इस एन मास्टर मिक्स फ्रॉम टॉप डीजे ब्राको सिल्वा versus Buka Buka Baya Chutney Baita Gana, special for Yuli Alamal.

beautiful mix by DJ Praco, Master Mix Silva versus Buka Buka Chutney by Tangana Mix. 9 मिनट गुजर चुका है, 6:07 साथियों, अगला बयान एक जबरदस्त बैलेट है, ओइट खसोंग डोर मैस्ट्रो मिशेल लक्ष्मण मेथ म्यूजिक फार्मासी पांडेरो रिकॉफर्ड बाय उस्तादों का उस्ताद और जिगरी दोस्त भाई राजेंद्र सुरेश हीरा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए सुनो जी मेरे प्यार को म्यूजिक रीअरेंज बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या सुनो जी मेरे प्यार को।

Beautiful Song, Su no Gimene Piarco, ooit origineel gezongen door maestro Michel Lechmingi met de muziekformatie Pandero, covered by Ostado Kaustad, great singer from Holland, maestro Suresh Rajender Hira, our music rearranged by maestro Ashok Ajodhya. 15 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6 बजकर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर या इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन fm.nl पर वर्ल्ड वाइड. यस यस यस, जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है. अगला बयान यारो एक जबरदस्त चटनी है, नवी हरपाल जी का ब्यूटीफुल सॉन्ग टू स्पाइसी फॉर सरनामी. सुन मोरे बाबा.

Beautiful song sun more baba nawin herbal to spicy ai sernami song ap sun rehete Famun Hindustani Radio ka रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 20 मिनट गुजर चुका है, 6:00 अगला बयान है फ्रॉम द म्यूजिक फरमाशी शो टाइम फ्रॉम सुरिनाम सिंगर शानिल नानू जी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनिए सयारा से लम्हे तक।

From the music pharmacy showtime, Shanil Nanu, ke beautiful awazmi Shayarara. Shayara se lamhe tak aap sun rahe the. 3 मिनट रह गया है 6:30 बजने में साथियों, तो एक और जबरदस्त सॉन्ग क्रिएटेड बाय Surinaamse artiest door middel van kunstmatige intelligentie AI technology se ye taiyar kiya gaya hai. Live baithak gana chatni sarnami hatwa pakar le aswa.

Това пък ли, аша, и хората това ли, created by AI technology, door Суринамца артиста мет караибиса инфлут Марвел хамак door кунстматиха интеллигенции. Алес door de компютер gecreëerd. मिनट गुजर चुका है, साढ़े छह बजकर तो वक्त हो गया है साथियों कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अर्ज क्या है यारों की तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहां से लाऊं, मैं मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, मैं तो मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहां से लाऊं।

कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं है, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं है, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं है। अगर मैं होता बादशाह, अगर मैं होता बादशाह तो कानून ऐसा बनाता, दिल तोड़ने वालों को सजाए मौत सुना देता। इस वाला बेचस्वार और बादशाह जी। एक बात बोलूं, कभी कभी आपको वही इंसान रुला कर रख देता है, कभी कभी आपको वही इंसान रुला कर रख देता है, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। दर्द कितना है बता नहीं सकते, दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते। आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे हैं कितने, आंसू गिरे हैं कितने गिना नहीं।

शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का बैठक गाना और चटनी क्वीन द ग्रेट बिजानवती चैतु जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये बयान आप सुन रहे थे। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 20 मिनट रह गया है 7 बजने में। साथियों, एक और नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का, जो कुछ 2 साल हुए हैं हॉलैंड देश में आया और कितने को टोपी पहरा दिया। द ग्रेट सुजल उमरोबू का ये चटनी ब्लैम प्रोड्यूस बाय सेलेक्टा बीट्स।

श्री जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश सोरेन देश का नौजवान कलाकार मैस्ट्रो सुजल उमराव जी का ये बिल्कुल जबरदस्त सॉन्ग आप सुन रहे थे। 15 मिनट बाकी है 7 बजने में साथियों। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का जो फनफ नीकिंग द्रियन तख्तक से अभी तक म्यूजिक फॉरमाशी द स्ट्रेंजर्स का लीड सिंगर है। मैं बात कर रहा हूं उस्तादों का उस्ताद द ग्रेट सिंगर फ्रॉम हॉलैंड बॉबी जेकब जी यानी बॉबी याकोब। ये अति सुंदर बयान को गाया है महान संगीतकार पाकिस्तान का इरफान साबिर और हॉलैंड देश का महान संगीतकार अशोक अयोध्या के म्यूजिक डायरेक्शन के अंदर। रोज रोज आंखों तले आशा जी का गाया हुआ ब्यूटीफुल सॉन्ग बॉबी जेकब के आवाज में आप सुनिए।

What a great song सुनाया आप सभी को इस जमाने का और हॉलैंडीज का मशहूर गायक द ग्रेट बॉबी याकोब महान संगीतकार पाकिस्तान का म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो वो सदियों से काम कर रहा है और हॉलैंडीज का द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर अशोक अयोध्या जी के साथ मिलकर ये थी सुंदर बयान को तैयार किए हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। इरफान शबीर और अशोक अयोध्या मिलकर नगमा को तैयार किया है। 9 मिनट रह गया है साथियों 7 बजने में, तो आज का इस सरनामी संगीत का प्रोग्राम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे मेरे ही आवाज में। निकटी निकट तक में ये अति सुंदर एल्बम मैंने निकाला था बेंटलेडर फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स मैस्ट्रो जिम शिव प्रसाद के बनाया हुआ रिमिक्स मेरे ही आवाज में सुरेन भगवान दीन गोरी बुलाएं।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं यार, तो 2 मिनट गुजर चुका है 7:00। सीवनन 20 सितंबर 2026 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे थे, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नैतिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड तीर्लक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रे। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, इश्तिहारे देंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फाइट्स से डाम सर्विस ग्रांट योर क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बना कर, और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी की को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार। आप आसमां कर तो देख, सभी जानकारी बैलेटेरियंस कंटोर यूरो फन मांडा टॉट फ्रेडाग ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07362247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07362247। जो भी रेडियो का काम होना दें कन्फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, और रिक्लाम बनाते रहना, और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना ना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Natuurlijk, zoals jullie allemaal hebben gehoord, hebben we ook ons eigen karaoke team al klaar, die al een paar optreden al achter de rug hebben. En heel veel goede respons. Ook 2 keer al live op de radio ook gezongen met ons team van Fahun Hindustani Radio. En ook van live optreden, vooral bij onze oudere ooms en tantes en broeders en zusters zijn we ook heel goed ontvangen. Dus volg onze social media, ook van de omroepers. Dan hoort u of ziet u wanneer wij binnenkort gaan optreden voor u. Dan bent u ook van harte welkom. De Abhiyakar is chota sa mota sa jo Fahun Hindustani Radio ka parivar ban chuka hai aur wo bante ja rahe hain. आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए, और आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है ना। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अप 07362247 पर। दान वर्ड ही ऑटोमेटिक डोर वर्बोंडन आर ऑन से टीम लीडर फ्रॉम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द वन एंड ओनली मास्टर जॉनी नंबर 1 दी दान यू फर्दर हियर मी गॉट हेल्पन। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। एकदम वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं आप सभी को कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स एंड बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के तरफ, जो मैं आप सभी के खिदमत में अब से तकरीबन 8 बजे रात्रि तक पेश करने वाला हूं। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल नया सॉन्ग है, महान लेखक जावेद अख्तार जी का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान। गाने वाले है ग्रेट सिंगर मैस्त्रो शान, और उनका साथ दे रही है वानिका नायक जी। म्यूजिक कंपोज्ड एंड प्रोड्यूस बाय मैस्त्रो प्रीतम, और ये अति सुंदर बयान मैं निकाला हूँ फिल्म हैवान से। मेरे हीरो है वो।

है वो एडफिल्म हैवान, अति सुंदर बयान, कंपोज एंड अरेंज बाय म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम, गाने वाले है शान जी, उनका साथ दे रही थी वानिका नायक, और ये अति सुंदर बयान को लिखा है जावेद अख्तर जी ने। अगला बयान महान गायक, इस जमाने का म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर प्रोड्यूसर द ग्रेट विशाल मिश्रा जी के आवाज में आप सुनिए अति सुंदर बयान। धानी श्री का लिखा हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय कार्तिक देव और गौरव देव। हाँ तू है

Beautiful song, huh? Too hey. Naya song, mashur gaane wala the great Vishal Mishra ji ke beautiful awaaz mein aur unhi ka साथ ही तैयार किया गया कार्तिक देव और गौरव देव के साथ ये ब्यूटीफुल धुन खसकरीफत और धान श्री दे। 15 मिनट गुजर चुका है साथियों, 7:00 और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स चल रहे हैं एट द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। कुछ दिन हुए हैं ये नगमा को मैं आप सभी को सुनाया था और काफ़ी लोगों को बहुत ही पसंद आया था। एक बार फिर लोगों के गुजारिश पर सज्जद अली का ओ बेबिया किसी के कहने में मत आना।

masterpiece of composing by Sachin Jigar. और क्या आवाज है ये महान गाने वाली द ग्रेट मधुवंती बख्शी जी साथ दे रहा था दिव्या कुमार और द मैन हिमसेल्फ म्यूजिक डायरेक्टर सचिन जिगर एड फिल्म स्त्री दो। पांच मिनट बाकी है साथियों, 7:30 बजने में एक और जबरदस्त सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग्स है जो मैं कोशिश कर रहा हूं चलाने के लिए, और इस बार लाते हैं महान गायक इस जमाने का द ग्रेट जावेद अली जी के ब्यूटीफुल आवाज में महान म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती के साथ, और अल्फाज़े है द ग्रेट समीर जी का एक दिन तेरी राहों में, एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी नकाब।

अब इस जमाने का महान गायक डिग्रेट जावेद अली जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। कंपोनेट और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती और अल्फा से था डिग्रेट समीर जी का। पूरे 7:30 का वक्त हो गया है साथियों, कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना मेरे आज के हिस्से के प्रोग्राम में।

अर्ज किया है साचों की वो खुश है पर शायद हमसे नहीं, वो नाराज है पर शायद हमसे नहीं, कौन कहता है कि उनके दिल के मैं मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं।

अर्ज किया है यारों की, दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। तुझसे मिलने का बहाना चाहता हूं, तुझसे मिलने का बहाना चाहता हूं, मैं तुझे अपना हाल बताना चाहता हूं, बेसब्री से इंतजार है मुझे उस पल का, मैं तुझे गले से लगाना चाहता हूं। ना पा सके ना भुला सके, ना पा सके ना भुला सके, ना बता सके ना जता सके, तू क्या है मेरे लिए ना खुद समझ सके ना तुझे समझा सके। ये भी होता है यारों, आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। वो रात वो बात वो मुलाकात वो हंसी वो खुशी वो यादें वो वादे, वो बीता हुआ कल वो गुजरा हुआ पल, वो तेरा साथ वो मेरे हाथों में तेरा हाथ, वो सब एक कहानी थी जो अधूरी रह गई, तू मिलकर भी ना मिल सका और मैं भूल कर भी ना भूल सका। खत्म मोहब्बत। तो ये था कुछ आखिरी शेर्स यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, हरफन मौला इज द सॉन्ग्स नेम, एड मूवी कोई जाने ना, गाने वाले जबरदस्त गायक म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर द ग्रेट विशाल दादलानी, उनका साथ दे रही है जारा खान, महान संगीतकार तानिश बख्शी का संगीत है और अल्फाज है अमिताभ बच्चा भट्टाचार्य जी का। हरफन मौला कोई जाने ना।

हरफन मौला अमीर खान और एली आ का ये जबरदस्त मूवी आप जरूर देखें जब फुर्सत है। फिल्म कोई जाने ना, महान गायक विशाल दादलानी और जरा खान के आवाजों में इतनी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर तानिश बख्शी का बनाया हुआ ये अति सुंदर मीठा धुन खसकरी फिदोर अमिताभ भट्टाचार्या। 10 मिनट बीत चुका है साथियों, 7:30 बजकर या तो 20 मिनट बाकी है 8 बजने में। जान ले गई एक फिल्म भूमि 2024 आप सुनिए इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी के ब्यूटीफुल आवाज में द ग्रेट सोनू निगम और उनका साथ दे रहा है एक बार फिर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी जी। अति सुंदर बयान खसकरी फिदोर श्रद्धा पंडित

beautiful song, wonderful song, जान ले गई from the movie Bhoomi, the great, इस जमाने का the great music director और singer producer, the brothers Salim Suleiman के साँच पर सुनाया आप सभी को इस जमाने का the king of melody, the great Sonu Nigam जी, महान लेखक श्रद्धा पंडित जी का लिखा हुआ यदि सुंदर बयान है। तो साथियों देखा जाए तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है आप सभी से विदा लेने को, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर सॉन्ग मैंने चुना हूं आप सभी के खिदमत में आज के इस रात्रि के हसीन प्रोग्राम में। तुम हर दफा हो महान गायक इस जमाने का, मैं तो ग्रेट वॉइस द ग्रेट अंकित तिवारी जी, महान संगीतकार तो साथ ही साथ है और लिखा है अति सुंदर बयान को अभिन्द्र कुमार उपाध्याय। मिलके सुनते हैं जबरदस्त सॉन्ग तुम हर दफा हो।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है इस जमाने का महान गायक द ग्रेट अंकित तिवारी, साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी है और लिखा है अति सुंदर बयान को अभिंद्र कुमार उपाध्याय। 8 मिनट बाकी है साथियों, 8 बजने में तो वक्त भी करीब आ गया है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बयान जो मैं आप श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ, महान गायक फहीम अब्दुल्ला के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए दिसंगर दी सायारा ओक हिफ़ज़ोंग, अति सुंदर आवाज का मालिक आप सुनिए, कंपोज एंड अरेंज आल्सो बाय द माएस्ट्रो और संगीत वैभव और पानी हैदर दर के साथ भी मिलके दिया है द ग्रेट फहीम जी। गाने का बोल है एहसास।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को इस जमाने का जबरदस्त गायक फहीम अब्दुल्ला जी, और ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया है मिलकर वैभव पानी और हैदर दर के साथ, खुद ही लिखा है दुहा शाह जी के मिल के साथ ये अति सुंदर बयान को, और नगमा का बोल है एहसास। तो साथियों यहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने का आया। ये उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीके से मैं आप श्रोताओं को सेवा करने में कोशिश किया, ये उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम लेकर, खलिंग मेथ ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल। तो मुझे आप सभी इजाजत दें, हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया चंद्रसेन गंगा जी। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ दर हेमंत कुमार के याद में।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। इफाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.ifaunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हो या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक गंगा और कुल घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। जो लोग चुन किए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए, आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश, द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस। आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से। लता जी है, जी हाँ, लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहाँ तक। यह शानदार गीत चला, हमने पेश की रवि साहब और आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फैफन नहीं हिंदू प्रसेंट लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म है का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चले कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जब भी जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाएं शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में यशुदास।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी, येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और सूरज, चांद और सूरज में से सलील चौधरी के साज पर।

रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिल के आपको ये शानदार द्विवेद सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखो जी, हाँ अभी थोड़ी समय बाकी है, तो हम पेश करते हैं ये गीत। ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हालिम सुने होंगे तो एक बार सुन लीजिएगा। एवरग्रीन किशोर कुमार।

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज़ सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उदित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊं? क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक आपको सुनाई है लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे कहीं प्यार ज़्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। निगेटिव फ्रीक्वेंसी पे तक 1974 का ये गीत मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए, क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में? अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने। चलो मिल के सुनते हैं।

रफी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: वाह
1: क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। FM पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, अगर होना था ज़रूर। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

ट्यून्ड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। स्वागत करते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

देखती हूँ जिधर, फिल्म हांगकांग में से। जी हाँ, फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए है ओपन एयर के सांस पर निगतिन त्वेयन सस्त का ये फिल्म है आशा जी की आवाज़ में। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। ओ क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

सुन जा, ऐ घटा काली घटा, बस एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी हाथी मेरे साथी में से निकाले निगती ए ने सी तो का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत हमने प्लेयर में आपको पता है हमने क्या रखे हैं, चलो सुनते हैं कि लता जी, जी हाँ लता जी की क्या मुसीबत है, लता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं वो खुद कह रही है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं। मजा ही आ रहा है या नहीं, इस बात की मजा आ रहा है

तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है, ये शानदार गीत हमने निकाला फिल्म राजा जानी में से निकलती त्वीं से फिर तक का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएं, कुछ ना कहो, साधना सरगम और अभिषेक जी नहीं, साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान, शंकर एहसान लोई के साज पर यह टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया आपको। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबरी तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं, इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है
0: इतना?
2: अच्छा
1: मुझे

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या हाथीस है, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाए और फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ते पे सत्ता।

मैं आग दिल में लगा दूंगा एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्य में सत्य पे सत्ता में से निकालकर आरती बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेघंतीन अख्तन सस्तख 1968 का ये गीत है। शंकर जय किशन के साज पर

तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने के दिन। अख्तन सैस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए हैं। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन, निगेटिव नई खनन से 79 का ये गीत।

लगा जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए नेक दिन नेक नसीब का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है

पहुंचे हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो पाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी राज्य।

लता जी आपको सुनाए अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयाँ में से हैं नहीं गिनती फिर से शस्त्र का जी हाँ नहीं गिनती फिर से शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं एक फिल्म है फिल्म शायद आपने देखे होंगे बहुत पुरानी फिल्म है ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है स्वार्थवेद फिल्म है शायद आपने देखे होंगे नाम है जग्गा डाकू जिसमें जयराज ने खेले हैं एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है एक्ट्रेस नाम नहीं है क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकालकर नेकेड नींस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर। ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

0: मिला कहां से।
1: वाह क्या दिव्य था रफी साहब और आशा जी की आवाज में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत तो क्या ख्याल है। जी हाँ रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकालकर 1965 का ये गीत निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, हमने कहा ना मैं कुं कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुना ये फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवा उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग ओवरलीड। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा, लेकिन सेज हेल यंग ओवरलीड दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ, गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ, और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं। मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिन सेंसेस्टक का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकेदार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकेदार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकेदार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांच पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के।

दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली, निकने से का ये गीत। हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है, 454 फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निगेति निघ्न शस्त्र का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब के आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका साड़ी भी बनता है, जी हाँ, रेशमी शायद साड़ी। चलिए www.fawnfm.nl पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। उदित नारायण और अलका याग्निक जी फिल्म धड़कन से निकाल रहे हैं, जी नहीं सॉरी फिल्म

कितना प्यारा है ये चेहरा, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फ़कीरा में से निकाल कर 1976 निकली सेशन तक का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ, अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

दीवाना एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। लेकिन तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बात यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नीखन तीन सेस का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताए हो फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

जहाँ तुम्हें देंगे ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से।

ए चांद की जेबाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेवन से हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निगदी एन सेवंत 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

तेरा होके नाचले फिर आपको सुना दे स्टीवन बेन। स्टीवन बेन की आवाज में आपके लिए पेश किया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, इंसान कहता है कि पैसा आए तो हम कुछ करके दिखाए, और पैसा कहता है मेरे प्यारे कि तुम कुछ करो, कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। ये पैसा का बोल है।

0: मेरे सजना, क्रोध करके वो सब मत गवाइए, क्रोध करके वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। और कहते हैं कि उस सुख का त्याग करें, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए, उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण है। समय के बात की हमने तो एक शायरी याद यहाँ से आ गए, और वो ऐसा है कि किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका कौन है। वैसे आपसे भी कोई पूछ ले कि इस दुनिया में आपका कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे ये मुझे पता नहीं है, पर ये जरूर कहूंगी कि किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका कौन है, मैंने हंसकर कहा वक्त, समय मेरे हुजूर, वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। कुछ जाना पहचाना से है ना शब्द।
1: अच्छा वो छोड़ो, देसी देखा।

क्या इसको ही कहते हैं प्यार? बोलो ना। दुनिया की सबसे महंगी चीज है विश्वास। ऐ मेरे दोस्त, विश्वास ही सबसे कीमती चीज है। कमाने में सालों लग सकते हैं, कमाने में सालों लग सकते हैं, और गंवाने में बस कुछ पल। एक बात ये भी है कि किसी का सरल स्वभाव, सरल यानी कि सिंपल स्वभाव, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप का

कि आज का प्रयास कल की सफलता है जरूर। आज आपने मेहनत की कुछ कमाने के लिए, तो कल जरूर उसका प्रभाव आपको जरूर से देखने को मिलेगा। आज का प्रयास कल की सफलता है।

मन्ना दे जी की आवाज में यहाँ से आपके लिए पेश कर दिया गया है, चुन चुन कर गीत यहाँ से आपके लिए लाया जाता है ए मेरे दोस्त।

दगा दगा वही वही आशा भोसले जी की आवाज में। सीख कुछ वक्त से ए मेरे दोस्त कि सीख कुछ वक्त से, वक्त सिखा रहा है कि कब कैसे क्या करना है। बस वक्त सिखा रहा है कि कब कैसे क्या करना है, सब बता रहा है। हमको बस थोड़ा चौकस रहना चाहिए। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि ये एक ही पल में सारे चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है।

इरफान जी की आवाज़ में, इरफान जी की आवाज़ में तेरी याद में सुबह और शाम। सुबह और शाम आप ही के याद में और गुजर जाता है। लगे हाथ ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये बात है कि क्रोध के समय, हाँ आप जरा गौर से सुने कि क्रोध जब आपके आए तो उस समय आप थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए तो दुनिया की सब समस्या हल हो जाएगा। नहीं किया है तो करके देखना। ये बातों जो है आप यहाँ सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से, हमारे जीवन में जरूर से इसे इसमें सुधार लाएगा। और जीवन में कभी मायूस ना होना, जीवन में कभी मायूस ना होना ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मोड़ बदल ले कोई नहीं जानता।

सनम आया है ये सब नए नए गीत आपके लिए भी लाया है। आप दूर दूर से मेरे साथ जुड़े हैं, हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। जी हाँ, मेरे साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के साथ आप जुड़े हैं। कभी कभी ना आए मेरे दोस्त कि कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान दिल की सारी परेशानियां दूर कर देती है। जो अपने सपने को पूरा करने का साहस रखता है ना आए दोस्त, जो अपने सपने को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। बात सही है। और एक ये भी है कि वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है जो किताबों में कभी नहीं, जो किताबों में कभी नहीं लिखा है और जो हम किताबों से नहीं सीख पाती है। ये वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है।

जाने वालों जरा मुड़ के देखो एक बार, आपकी तरह मैं भी एक इंसान हूँ। ये बार बार कार कर रहा है और अपने ही आवाज में श्रीमान इरफान जी ने सुना दी हमको। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है, अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो बुरे वक्त में भी मुस्कुराते हैं।

am in love, you are in love, he is and she is also in love. प्यार से ये सृष्टि से रचाई गई है मेरे प्यारे सुनने वालों, तो हम और आपसे क्या कहे, लता और किशोर दास जी की आवाज में यहाँ से आपने और मैं भी सुने हैं। आपको ये बताना चाहती हूँ और वो क्या है, जरा हम यहाँ से आपके बता दे। झूठे प्यार को पहचाने, झूठे प्यार को पहचाने, सच्चा प्यार भी होता है। पर कहीं यहां से हम आपको इतला करते हैं कि झूठे प्यार को भी आप जरूर से पहचाने। तो पहला ये है, जो आपको सबसे बात में याद करे, जो आपको सबसे बात में याद करे, वो सच्चा प्यार नहीं कर सकते। जो प्रायोरिटी आपको नहीं देते, उसके मतलब है वो सच्चा प्यार आपसे नहीं करते। जहाँ पर एक दूसरे को समय ना दिया जाए, एक दूसरे को समय ना दिया जाए, वहाँ सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और जो आपको गलत काम के लिए जोर दे, जो आपको गलत काम करने के लिए जोर दे, वो सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और एक ये भी है, जो अपने परिवार को छोड़कर आपके पास आए हैं, वो आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, ये भी सच्चा प्यार नहीं है। के जीवन में ऐसे ऐसे घड़ी जो आते हैं, तो आप जरूर से इस पर गौर करें।

ये सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। गीत का बोल आई एम इन लव सोनू निगम महालक्ष्मी आयर।

प्यार, प्यार ना ही सिर्फ अपने पति या पत्नी से किया जाता है, बच्चों से भी, परिवार से भी, माँ बाप से भी, पड़ोसी से भी, भाई बहन से भी। एक बार कभी मैंने कहा था कि अगर ये सब नहीं रहेगा, भाई बहन, बच्चे, माँ बाप, तो इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई कोई भी नहीं। लोग कहेगा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, पर माँ नहीं, मैं तुम्हारे पिता जैसी हूँ। जैसी ये शब्द, माँ माँ होती है, पिता पिता होता, अपना बच्चा होता है, पति पत्नी अपने होते हैं। आप दूसरा स्त्री के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, दूसरा पुरुष के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, पर वो जो आपके साथ रह चुके हैं, जिसके साथ आपके गांठ बंधन हुए हैं, वो सिर्फ एक बार ही होता है। इस बात पर ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ बैठो, अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनसे बात करो, एक दिन वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। उन्हें आज़ाद छोड़ दो, अपने माँ बाप को आज़ाद छोड़ दो, खर्च करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो, एक दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे। उन्हें बार बार ना टोको, जब वो खामोश हो जाएंगे तुम उनकी आवाज़ सुनने को तरस जाओगे। जितना हो सके, जितना आपसे हो सके, उनका आशीर्वाद लो। जितना आपसे हो सके अपने माता पिता का, अपने बुजुर्ग का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, और जीते जी अपने गलती के लिए उनसे माफी मांगो। जब वो चले जाएंगे, फिर तुम्हारे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं होगा। उनके पास बैठो, उनके साथ खाना खाओ, एक दिन ऐसा भी आएगा वो चले जाएंगे और तुम थाली में भोजन लेकर जब बैठोगे तो आप उनको याद करके रो लोगे, तो आप उनको याद करके रोने लगेंगे।